0: Government of South Australia supports community broadcaster 5EBI.
1: Its member groups and volunteers.
2: Did you know 5EBI holds a community broadcasting licence specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That licence is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages and backgrounds with programs that inform, educate and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity.
3: Namaskar Adelaide, main hu aapki pyari Radio Jockey Nikita aur aap sun rahe 5EBI 103.1 par Akashwani Adelaide. और आप सबका स्वागत है आप ही के फेवरेट प्रोग्राम यादों की बारात में। और आज का ये खास प्रोग्राम समर्पित है बॉलीवुड की एक ऐसी सुपरस्टार के नाम जिनके फैंस दुनिया के हर कोने में मौजूद है। जी हाँ, सलमान खान स्पेशल लेकर आई हूँ, सलमान खान के सुनहरे गीत। आज के आधे घंटे के सफ़र में उनकी ढेर सारी बातें करेंगे और अलग अलग हीरोइन के साथ उनके प्यारे नगमे आपके हवाले करेंगे। तो पहली हीरोइन है भाग्यश्री और जो गीत बनता है वो है दिल दीवाना। मैंने प्यार किया 1989 में आई थी उस मूवी का ये गीत है। आवाज़ है लता मंगेशकर जी की और उनका साथ दिया है SB बाल सुब्रमण्यम जी ने। सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा ओनली ऑन 5EBI पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

दोस्तों, सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में हुआ। उनके पिताजी मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर सलीम खान है। सलमान ने अपनी फिल्म की करियर की शुरुआत 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की, जहां एक सपोर्टिंग रोल निभाते हुए नजर आए। लेकिन असली पहचान उन्हें मिली 1989 की रोमांटिक ब्लॉकबस्टर मैंने प्यार किया से मिली। इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, बल्कि सलमान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। 1990 की दशक में उन्होंने बागी, साजन, हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, जुड़वा, प्यार किया तो डरना क्या, हम दिल दे चुके सनम और हम साथ साथ हैं जैसी सुपरहिट फिल्मों से अपनी जगह बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल की। और अब सुनते हैं माधुरी दीक्षित के साथ सलमान खान की एक खूबसूरत पेशकश। गीत है दीदी तेरा देवर दीवाना, मूवी हम आपके हैं कौन, जो कि 1994 में आई थी और इनकी जोड़ी बेहद ही सुपरहिट रही। सुनते हैं ओनली ऑन 5 EBI आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

0: दोस्तों, हर बड़े कलाकार की जिंदगी में एक मुश्किल दौर भी आता है। सलमान खान के करियर में भी 2006 से 2008 के बीच कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसी दौरान जानी मन, सलाम ए इश्क, मैरी गोल्ड, गॉड टू सी ग्रेट हो और हीरोज जैसे प्रोजेक्ट उनकी पहली वाली सफलता को दोहरा नहीं सके। लेकिन कहते हैं ना, असली हीरो वही होता है जो गिर कर भी उठ खड़ा हो। 2009 में आई वांटेड ने सलमान खान के करियर में एक नई पहचान दिलाई। इसी के बाद दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, केक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान और टाइगर जिंदा है उन्हें बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस किंग बना दिया। अब वक्त है कैटरीना कैफ के साथ सलमान खान की ब्लॉकबस्टर केमिस्ट्री का गीत पेश करने की। तो चलिए सुनते हैं दिल दिया गल्ला, टाइगर जिंदा है इस मूवी का ये गीत, ओनली ऑन 5 EBI पर सुनेंगे आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।
1: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: seeking a genuine assortment of spices and authentic desi products? If so, a visit to Royal India Groceries is indispensable. Transporting you to the heart of India, it offers an exploration into desi culture. Situated on Marion Road in South Plympton, Royal India Groceries welcomes visitors 7 days a week. For any queries or further information, please reach out on 0883710051.
1: Asian fusion and authentic Indian. With a relaxing seating arrangement for dine-in and takeaway options at our two locations, Mother India Kitchen, Port Road, Alberton 08711-26878 and Cinnamon Curry, Findon Road, Woodville South 08708032001. You can contact for your private or official functions. We are proudly announced that Mother India Kitchen and Cinnamon Curry are the sponsors of this program.
2: दोस्तों, मोहब्बत की खूबसूरती ये नहीं कि आप किसी को बदल दें। खूबसूरती तो तब है जब आप उसे उसकी हर आदत के साथ अपना लें। सफ़र में हज़ार चेहरे मिले, हर मोड़ पर कोई नया मिला। सफ़र पे हज़ार चेहरे मिले, हर मोड़ पर कोई नया मिला, पर दिल ने बस उसी को अपनाया जिसके जैसे कोई ना मिला। और इसी एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है ये अगला गीत। ये गीत 2016 की फिल्म सुल्तान का है, जिसमें सलमान खान और अनुष्का शर्मा की दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री दिखाई देती है। फिल्म में सलमान खान ने एक पहलवान सुल्तान अली खान का किरदार निभाया है। आइए सुनते हैं जग घूमिया, बेहद ही उमदा गीत जिसे आवाज दी है राहत फतेह अली खान ने। ओनली ऑन 5 VVR पर सुनेंगे आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं 5VBI 103.1 पर आकाशवाणी एडलेड और आप सभी का स्वागत है यादों की बारात में। हम बात कर रहे हैं एक्टर सलमान खान की, जो कि सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, प्रोड्यूसर, टेलीविजन होस्ट और कई हीरो हीरोइन और सिंगर्स की करियर भी इन्होंने लॉन्च किए है, किया है, उनका करियर बनाया है। 2010 से वो बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं और उनकी NGO बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए काम करती है। अवार्ड्स की बात करें तो फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू, जो मैंने प्यार किया के लिए उन्हें मिला, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कुछ कुछ होता है इस मूवी के लिए, और 2 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड प्रोड्यूसर के रूप में, साथ ही कई स्क्रीन, आईफा, जी सिनेमा और स्टारडस्ट अवार्ड भी इन्होंने जीते हैं। चलिए सुनते हैं करीना कपूर के साथ एक रोमांटिक गीत, तेरी मेरी प्रेम कहानी बॉडीगार्ड, जो कि 2011 में आई थी, और करीना कपूर के साथ इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी बेहद ही पसंद की गई। सुनते हैं ओनली ऑन 5VBI पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

सलमान खान की एक खास बात ये है कि हर जनरेशन की हीरोइन के साथ उनकी जोड़ी पसंद की गई। भाग्यश्री से लेकर माधुरी दीक्षित तक, ऐश्वर्या से लेकर कैटरीना कैफ तक, हर दौर में सलमान ने अलग अलग तरीके की किरदार निभाए और हर जनरेशन को अपना फैन बनाया। दोस्तों, सलमान खान का अगर सफ़र देखें तो हमें ये सीख मिलती है कि सफलता हो या असफलता, दोनों ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन अगर हौसला हो, मेहनत हो और अपने फैंस का प्यार और भरोसा हो तो वापस शिखर तक पहुंचना मुमकिन है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपकी होस्ट निकिता करती हूँ आपको अलविदा। सुनते हैं जाते जाते ऐश्वर्या और सलमान का ये गीत तड़प तड़प के, जो कि मूवी हम दिल दे चुकी सनम से लिया है। 1999 में ये मूवी आई थी। सुनते हैं ओनली ऑन 5 EBI पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।